0: प्रिय दोस्तों, आज के चिंतन प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हमारी तरफ से मंगल कामना करते हुए प्रातः की शुभकामनाएं। आज के चिंतन प्रसारण में जीवन पथ दर्शक शुभ संदेश का चिंतन करेंगे। आज का मानव ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के उपायों को लेकर उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जब उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो यह दुखी और निराश बन जाता है। सभी कुछ निर्थक लगने लगता है। उसके जीवन में हमें रस लाना है। दोस्तों, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि मानव ईश्वर की प्राप्ति में निष्फल बन गया है और निराश हो गया है। उसके लिए हमारा जीवित परमेश्वर स्वतः उन्हें खोजने निकला है। उनकी आत्मा का उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आज की सुबह हम उस जीवित परमेश्वर के सत्य को समझने, उसको स्वीकारने और अंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसी आशा और प्रार्थना है।
1: खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। जब दोनों के बीच एक बार कौन तेज दौड़ता है, इस बात की बाजी लगी थी। दौड़ शुरू हुई और जैसा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। काफी आगे निकल जाने के बाद उसने रुक कर पीछे की ओर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। वो जगह जहां खरगोश रुका था बड़ी ही प्यारी थी। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ठंडी हवा और पास बहती हुई नदी का स्वच्छ और निर्मल जल सबने मिलकर खरगोश को मोहित कर डाला। उसका मन किया कि वो इन घासों का मजा लेकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। फिर खरगोश ने पेट भर घास खाकर आराम किया। आराम करते करते उसने बुदबुदाया, तेज दौड़ना क्या सबके वश की बात है? दौड़ तो सकता नहीं, चला बाजी लगाने। तेज दौड़ने के घमंड में चूर खरगोश की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं। इधर कछुआ अपनी मंद गति से निरंतर चलता रहा। उसे तो बस दौड़ जीतने की ही धुन थी। सो चुकने के बाद जब खरगोश की नींद टूटी तो काफी समय बीत चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश ने फिर घमंड से बुदबुदाया, दौड़ तो सकता नहीं, चला मुझसे तेज दौड़ने की बाजी लगाने। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा, किंतु जब वो तय किए हुए स्थान पर पहुंचा तो कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। तेज दौड़ने वाला खरगोश अपने घमंड के कारण बाजी हार चुका था। क्या खरगोश, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने घमंड के कारण वो हार चुका था। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी क्या हुआ है, अभी तो जीने के लिए एक लंबी अवधि पड़ी है, जो काम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। किंतु सच तो यह है कि ऐसा सोचकर जहां हमें एक और जीवन के बहुत ही छोटे होने का एहसास तक नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर हमारे पास बहुत वक्त है। इस असत्य की परिधि में बंद कर हम सांसारिक हरियाली अर्थात संसार की चकाचौंध, वैभव और शान शौकत को देखकर वक्त की मूल्यता को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन की हर बाजी हम हारते चले जाते हैं। क्रिस्ट कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्रिस्ट का ये कथन हमारे जीवन का एक सत्य है, जहां हमारा जीवन बहुत ही छोटा बनकर रह जाता है। एक दूसरे संदर्भ में क्रिस्ट पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्रिस्ट ने हमेशा अपने जीवन में वक्त को पहचान कर जिया। अपने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माता से क्रिस्ट को यह कहना पड़ा था, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना ही नहीं, क्रिस्ट की इसी निरंतर कार्य प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन में उन कामों को पूरा करने से कभी रोक नहीं पाए जो काम वे करने के लिए संसार में आए थे। क्रिस्ट कहते हैं 10 कुंवारियां थी, उन्हें दूल्हे की प्रतीक्षा थी। उन 10 कुंवारियों में से 5 ने दूल्हे से मिलने के लिए पूर्ण तैयारियां कर रखी थीं और अन्य 5 ने नहीं। जिन 5 कुंवारियों ने तैयारियां नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, जब दूल्हे के आने का समय निकट होगा तो उस समय तैयारियां कर ली जाएंगी। इसलिए वे निश्चिंत अचानक दूल्हे का आना हुआ और वे दूल्हे से भेंट करने से वंचित रह गईं, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं। 10 कुंवारियों का ये बहुचर्चित दृष्टांत हमें इस बात से अवगत कराता है कि जीवन में हमें सदा तैयार रहना है, और तैयार रहना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इन कुंवारियों में से सिर्फ 5 ही दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर सकी थीं, अन्य 5 नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देर है, बहुत वक्त है। ये सोचकर वे ऊंघते ऊंघते सो गई थीं। नतीजा ये हुआ कि जब दूल्हे के आने की धूम मची तो वे तैयार नहीं थीं। इस कारण वे द्वार के बाहर छोड़ दी गईं। जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए बाइबल कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जीवन में वक्त की कमी को प्रकट करते हुए पवित्र बाइबल कहती है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है फिर लोप हो जाती है। किंतु इतनी अस्पष्टता के बावजूद आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार की हरियाली में ही अपने मन को लगा रखा है। वे इस सच्चाई को अनुभव करने से चूक गए हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान, चाहे वो तेज दौड़ने का हो या फिर किसी और बात को करने का, उसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही कम वक्त है। फिर खरगोश के हारने का एक और कारण ये भी था कि उसे अपने तेज दौड़ने का बड़ा ही घमंड था। उसके इसी घमंड ने उसे बाजी जीतने से वंचित कर दिया था। जीवन में हमारा ऐसा घमंड हमें विनाश की ओर ले चलता है। यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, घमंड के मुकुट पर हाय। हमारे पास वक्त का बहुत होना या जीवन का बहुत लंबा होना जैसी हमारी सीमित और तुच्छ समझ ही हमें जीवन में पराजय का मुख दिखाती है। सच तो यह है कि विजयी जीवन जीना है तो वक्त की कीमत और कमी दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए जीना आवश्यक है, अन्यथा जीवन की दौड़ जीत लेना किसी भी कीमत पर संभव नहीं। वक्त की कीमत और कमी को समझ लेना ही जीवन में हर प्रकार के घमंड का परित्याग करके जीना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन। संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से पुरस्कार पाने के लिए और योग्य ठहरूं। जीवन की दौड़ में मंजिल तक पहुंच जाना ही जीवन है, सच यही जीवन है, एक पुरस्कृत जीवन।

दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। पता एक बार फिर से: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008।

0: प्रिय दोस्तों, आज के चिंतन प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हमारी तरफ से मंगल कामना करते हुए प्रातः की शुभकामनाएं। आज के चिंतन प्रसारण में जीवन पथ दर्शक शुभ संदेश का चिंतन करेंगे। आज का मानव ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के उपायों को लेकर उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जब उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो यह दुखी और निराश बन जाता है। सभी कुछ निर्थक लगने लगता है। उसके जीवन में हमें रस लाना है। दोस्तों, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि मानव ईश्वर की प्राप्ति में निष्फल बन गया है और निराश हो गया है। उसके लिए हमारा जीवित परमेश्वर स्वतः उन्हें खोजने निकला है। उनकी आत्मा का उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आज की सुबह हम उस जीवित परमेश्वर के सत्य को समझने, उसको स्वीकारने और अंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसी आशा और प्रार्थना है।
1: खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। जब दोनों के बीच एक बार कौन तेज दौड़ता है, इस बात की बाजी लगी थी। दौड़ शुरू हुई और जैसा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। काफी आगे निकल जाने के बाद उसने रुक कर पीछे की ओर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। वो जगह जहां खरगोश रुका था बड़ी ही प्यारी थी। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ठंडी हवा और पास बहती हुई नदी का स्वच्छ और निर्मल जल सबने मिलकर खरगोश को मोहित कर डाला। उसका मन किया कि वो इन घासों का मजा लेकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। फिर खरगोश ने पेट भर घास खाकर आराम किया। आराम करते करते उसने बुदबुदाया, तेज दौड़ना क्या सबके वश की बात है? दौड़ तो सकता नहीं, चला बाजी लगाने। तेज दौड़ने के घमंड में चूर खरगोश की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं। इधर कछुआ अपनी मंद गति से निरंतर चलता रहा। उसे तो बस दौड़ जीतने की ही धुन थी। सो चुकने के बाद जब खरगोश की नींद टूटी तो काफी समय बीत चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश ने फिर घमंड से बुदबुदाया, दौड़ तो सकता नहीं, चला मुझसे तेज दौड़ने की बाजी लगाने। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा, किंतु जब वो तय किए हुए स्थान पर पहुंचा तो कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। तेज दौड़ने वाला खरगोश अपने घमंड के कारण बाजी हार चुका था। क्या खरगोश, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने घमंड के कारण वो हार चुका था। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी क्या हुआ है, अभी तो जीने के लिए एक लंबी अवधि पड़ी है, जो काम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। किंतु सच तो यह है कि ऐसा सोचकर जहां हमें एक और जीवन के बहुत ही छोटे होने का एहसास तक नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर हमारे पास बहुत वक्त है। इस असत्य की परिधि में बंद कर हम सांसारिक हरियाली अर्थात संसार की चकाचौंध, वैभव और शान शौकत को देखकर वक्त की मूल्यता को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन की हर बाजी हम हारते चले जाते हैं। क्रिस्ट कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्रिस्ट का ये कथन हमारे जीवन का एक सत्य है, जहां हमारा जीवन बहुत ही छोटा बनकर रह जाता है। एक दूसरे संदर्भ में क्रिस्ट पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्रिस्ट ने हमेशा अपने जीवन में वक्त को पहचान कर जिया। अपने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माता से क्रिस्ट को यह कहना पड़ा था, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना ही नहीं, क्रिस्ट की इसी निरंतर कार्य प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन में उन कामों को पूरा करने से कभी रोक नहीं पाए जो काम वे करने के लिए संसार में आए थे। क्रिस्ट कहते हैं 10 कुंवारियां थी, उन्हें दूल्हे की प्रतीक्षा थी। उन 10 कुंवारियों में से 5 ने दूल्हे से मिलने के लिए पूर्ण तैयारियां कर रखी थीं और अन्य 5 ने नहीं। जिन 5 कुंवारियों ने तैयारियां नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, जब दूल्हे के आने का समय निकट होगा तो उस समय तैयारियां कर ली जाएंगी। इसलिए वे निश्चिंत अचानक दूल्हे का आना हुआ और वे दूल्हे से भेंट करने से वंचित रह गईं, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं। 10 कुंवारियों का ये बहुचर्चित दृष्टांत हमें इस बात से अवगत कराता है कि जीवन में हमें सदा तैयार रहना है, और तैयार रहना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इन कुंवारियों में से सिर्फ 5 ही दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर सकी थीं, अन्य 5 नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देर है, बहुत वक्त है। ये सोचकर वे ऊंघते ऊंघते सो गई थीं। नतीजा ये हुआ कि जब दूल्हे के आने की धूम मची तो वे तैयार नहीं थीं। इस कारण वे द्वार के बाहर छोड़ दी गईं। जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए बाइबल कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जीवन में वक्त की कमी को प्रकट करते हुए पवित्र बाइबल कहती है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है फिर लोप हो जाती है। किंतु इतनी अस्पष्टता के बावजूद आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार की हरियाली में ही अपने मन को लगा रखा है। वे इस सच्चाई को अनुभव करने से चूक गए हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान, चाहे वो तेज दौड़ने का हो या फिर किसी और बात को करने का, उसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही कम वक्त है। फिर खरगोश के हारने का एक और कारण ये भी था कि उसे अपने तेज दौड़ने का बड़ा ही घमंड था। उसके इसी घमंड ने उसे बाजी जीतने से वंचित कर दिया था। जीवन में हमारा ऐसा घमंड हमें विनाश की ओर ले चलता है। यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, घमंड के मुकुट पर हाय। हमारे पास वक्त का बहुत होना या जीवन का बहुत लंबा होना जैसी हमारी सीमित और तुच्छ समझ ही हमें जीवन में पराजय का मुख दिखाती है। सच तो यह है कि विजयी जीवन जीना है तो वक्त की कीमत और कमी दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए जीना आवश्यक है, अन्यथा जीवन की दौड़ जीत लेना किसी भी कीमत पर संभव नहीं। वक्त की कीमत और कमी को समझ लेना ही जीवन में हर प्रकार के घमंड का परित्याग करके जीना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन। संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से पुरस्कार पाने के लिए और योग्य ठहरूं। जीवन की दौड़ में मंजिल तक पहुंच जाना ही जीवन है, सच यही जीवन है, एक पुरस्कृत जीवन।

दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। पता एक बार फिर से: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008।

0: प्रिय दोस्तों, आज के चिंतन प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हमारी तरफ से मंगल कामना करते हुए प्रातः की शुभकामनाएं। आज के चिंतन प्रसारण में जीवन पथ दर्शक शुभ संदेश का चिंतन करेंगे। आज का मानव ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के उपायों को लेकर उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जब उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो यह दुखी और निराश बन जाता है। सभी कुछ निर्थक लगने लगता है। उसके जीवन में हमें रस लाना है। दोस्तों, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि मानव ईश्वर की प्राप्ति में निष्फल बन गया है और निराश हो गया है। उसके लिए हमारा जीवित परमेश्वर स्वतः उन्हें खोजने निकला है। उनकी आत्मा का उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आज की सुबह हम उस जीवित परमेश्वर के सत्य को समझने, उसको स्वीकारने और अंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसी आशा और प्रार्थना है।
1: खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। जब दोनों के बीच एक बार कौन तेज दौड़ता है, इस बात की बाजी लगी थी। दौड़ शुरू हुई और जैसा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। काफी आगे निकल जाने के बाद उसने रुक कर पीछे की ओर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। वो जगह जहां खरगोश रुका था बड़ी ही प्यारी थी। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ठंडी हवा और पास बहती हुई नदी का स्वच्छ और निर्मल जल सबने मिलकर खरगोश को मोहित कर डाला। उसका मन किया कि वो इन घासों का मजा लेकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। फिर खरगोश ने पेट भर घास खाकर आराम किया। आराम करते करते उसने बुदबुदाया, तेज दौड़ना क्या सबके वश की बात है? दौड़ तो सकता नहीं, चला बाजी लगाने। तेज दौड़ने के घमंड में चूर खरगोश की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं। इधर कछुआ अपनी मंद गति से निरंतर चलता रहा। उसे तो बस दौड़ जीतने की ही धुन थी। सो चुकने के बाद जब खरगोश की नींद टूटी तो काफी समय बीत चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश ने फिर घमंड से बुदबुदाया, दौड़ तो सकता नहीं, चला मुझसे तेज दौड़ने की बाजी लगाने। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा, किंतु जब वो तय किए हुए स्थान पर पहुंचा तो कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। तेज दौड़ने वाला खरगोश अपने घमंड के कारण बाजी हार चुका था। क्या खरगोश, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने घमंड के कारण वो हार चुका था। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी क्या हुआ है, अभी तो जीने के लिए एक लंबी अवधि पड़ी है, जो काम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। किंतु सच तो यह है कि ऐसा सोचकर जहां हमें एक और जीवन के बहुत ही छोटे होने का एहसास तक नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर हमारे पास बहुत वक्त है। इस असत्य की परिधि में बंद कर हम सांसारिक हरियाली अर्थात संसार की चकाचौंध, वैभव और शान शौकत को देखकर वक्त की मूल्यता को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन की हर बाजी हम हारते चले जाते हैं। क्रिस्ट कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें

उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ख्रीष्ट का ये कथन हमारे जीवन का एक सत्य है, जहां हमारा जीवन बहुत ही छोटा बनकर रह जाता है। एक दूसरे संदर्भ में ख्रीष्ट पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ख्रीष्ट ने हमेशा अपने जीवन में वक्त को पहचान कर जिया। अपने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माता से ख्रीष्ट को यह कहना पड़ा था, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना ही नहीं, ख्रीष्ट की इसी निरंतर कार्य प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन में उन कामों को पूरा करने से कभी रोक नहीं पाए जो काम वे करने के लिए संसार में आए थे। ख्रीष्ट कहते हैं, 10 कुंवारियां थी, उन्हें दूल्हे की प्रतीक्षा थी। उन 10 कुंवारियों में से 5 ने दूल्हे से मिलने के लिए पूर्ण तैयारियां कर रखी थीं और अन्य 5 ने नहीं। जिन 5 कुंवारियों ने तैयारियां नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, जब दूल्हे के आने का समय निकट होगा तो उस समय तैयारियां कर ली जाएंगी। इसलिए वे निश्चिंत अचानक दूल्हे का आना हुआ और वे दूल्हे से भेंट करने से वंचित रह गईं, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं। 10 कुंवारियों का ये बहुचर्चित दृष्टांत हमें इस बात से अवगत कराता है कि जीवन में हमें सदा तैयार रहना है, और तैयार रहना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इन कुंवारियों में से सिर्फ 5 ही दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर सकी थीं, अन्य 5 नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देर है, बहुत वक्त है। ये सोचकर वे ऊंघते ऊंघते सो गई थीं। नतीजा ये हुआ कि जब दूल्हे के आने की धूम मची तो वे तैयार नहीं थीं। इस कारण वे द्वार के बाहर छोड़ दी गईं। जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए बाइबल कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जीवन में वक्त की कमी को प्रकट करते हुए पवित्र बाइबल कहती है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है फिर लोप हो जाती है। किंतु इतनी अस्पष्टता के बावजूद आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार की हरियाली में ही अपने मन को लगा रखा है। वे इस सच्चाई को अनुभव करने से चूक गए हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान, चाहे वो तेज दौड़ने का हो या फिर किसी और बात को करने का, उसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही कम वक्त है। फिर खरगोश के हारने का एक और कारण ये भी था कि उसे अपने तेज दौड़ने का बड़ा ही घमंड था। उसके इसी घमंड ने उसे बाजी जीतने से वंचित कर दिया था। जीवन में हमारा ऐसा घमंड हमें विनाश की ओर ले चलता है। यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, घमंड के मुकुट पर हाय। हमारे पास वक्त का बहुत होना या जीवन का बहुत लंबा होना जैसी हमारी सीमित और तुच्छ समझ ही हमें जीवन में पराजय का मुख दिखाती है। सच तो यह है कि विजयी जीवन जीना है तो वक्त की कीमत और कमी दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए जीना आवश्यक है। अन्यथा जीवन की दौड़ जीत लेना किसी भी कीमत पर संभव नहीं। वक्त की कीमत और कमी को समझ लेना ही जीवन में हर प्रकार के घमंड का परित्याग करके जीना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन। संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है।
वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से पुरस्कार पाने के लिए अयोग्य ठहरूं। जीवन की दौड़ में मंजिल तक पहुंच जाना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक पुरस्कृत जीवन।

दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। पता एक बार फिर से: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008।

0: प्रिय दोस्तों, आज के चिंतन प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हमारी तरफ से मंगल कामना करते हुए प्रातः की शुभकामनाएं। आज के चिंतन प्रसारण में जीवन पथ दर्शक शुभ संदेश का चिंतन करेंगे। आज का मानव ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के उपायों को लेकर उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जब उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो यह दुखी और निराश बन जाता है। सभी कुछ निर्थक लगने लगता है। उसके जीवन में हमें रस लाना है। दोस्तों, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि मानव ईश्वर की प्राप्ति में निष्फल बन गया है और निराश हो गया है। उसके लिए हमारा जीवित परमेश्वर स्वतः उन्हें खोजने निकला है। उनकी आत्मा का उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आज की सुबह हम उस जीवित परमेश्वर के सत्य को समझने, उसको स्वीकारने और अंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसी आशा और प्रार्थना है।
1: खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। जब दोनों के बीच एक बार कौन तेज दौड़ता है, इस बात की बाजी लगी थी। दौड़ शुरू हुई और जैसा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। काफी आगे निकल जाने के बाद उसने रुक कर पीछे की ओर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। वो जगह जहां खरगोश रुका था बड़ी ही प्यारी थी। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ठंडी हवा और पास बहती हुई नदी का स्वच्छ और निर्मल जल सबने मिलकर खरगोश को मोहित कर डाला। उसका मन किया कि वो इन घासों का मजा लेकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। फिर खरगोश ने पेट भर घास खाकर आराम किया। आराम करते करते उसने बुदबुदाया, तेज दौड़ना क्या सबके वश की बात है? दौड़ तो सकता नहीं, चला बाजी लगाने। तेज दौड़ने के घमंड में चूर खरगोश की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं। इधर कछुआ अपनी मंद गति से निरंतर चलता रहा। उसे तो बस दौड़ जीतने की ही धुन थी। सो चुकने के बाद जब खरगोश की नींद टूटी तो काफी समय बीत चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश ने फिर घमंड से बुदबुदाया, दौड़ तो सकता नहीं, चला मुझसे तेज दौड़ने की बाजी लगाने। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा, किंतु जब वो तय किए हुए स्थान पर पहुंचा तो कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। तेज दौड़ने वाला खरगोश अपने घमंड के कारण बाजी हार चुका था। क्या खरगोश, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने घमंड के कारण वो हार चुका था। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी क्या हुआ है, अभी तो जीने के लिए एक लंबी अवधि पड़ी है, जो काम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। किंतु सच तो यह है कि ऐसा सोचकर जहां हमें एक और जीवन के बहुत ही छोटे होने का एहसास तक नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर हमारे पास बहुत वक्त है। इस असत्य की परिधि में बंद कर हम सांसारिक हरियाली अर्थात संसार की चकाचौंध, वैभव और शान शौकत को देखकर वक्त की मूल्यता को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन की हर बाजी हम हारते चले जाते हैं। क्रिस्ट कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्रिस्ट का ये कथन हमारे जीवन का एक सत्य है, जहां हमारा जीवन बहुत ही छोटा बनकर रह जाता है। एक दूसरे संदर्भ में क्रिस्ट पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्रिस्ट ने हमेशा अपने जीवन में वक्त को पहचान कर जिया। अपने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माता से क्रिस्ट को यह कहना पड़ा था, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना ही नहीं, क्रिस्ट की इसी निरंतर कार्य प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन में उन कामों को पूरा करने से कभी रोक नहीं पाए जो काम वे करने के लिए संसार में आए थे। क्रिस्ट कहते हैं 10 कुंवारियां थी, उन्हें दूल्हे की प्रतीक्षा थी। उन 10 कुंवारियों में से 5 ने दूल्हे से मिलने के लिए पूर्ण तैयारियां कर रखी थीं और अन्य 5 ने नहीं। जिन 5 कुंवारियों ने तैयारियां नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, जब दूल्हे के आने का समय निकट होगा तो उस समय तैयारियां कर ली जाएंगी। इसलिए वे निश्चिंत अचानक दूल्हे का आना हुआ और वे दूल्हे से भेंट करने से वंचित रह गईं, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं। 10 कुंवारियों का ये बहुचर्चित दृष्टांत हमें इस बात से अवगत कराता है कि जीवन में हमें सदा तैयार रहना है, और तैयार रहना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इन कुंवारियों में से सिर्फ 5 ही दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर सकी थीं, अन्य 5 नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देर है, बहुत वक्त है। ये सोचकर वे ऊंघते ऊंघते सो गई थीं। नतीजा ये हुआ कि जब दूल्हे के आने की धूम मची तो वे तैयार नहीं थीं। इस कारण वे द्वार के बाहर छोड़ दी गईं। जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए बाइबल कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जीवन में वक्त की कमी को प्रकट करते हुए पवित्र बाइबल कहती है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है फिर लोप हो जाती है। किंतु इतनी अस्पष्टता के बावजूद आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार की हरियाली में ही अपने मन को लगा रखा है। वे इस सच्चाई को अनुभव करने से चूक गए हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान, चाहे वो तेज दौड़ने का हो या फिर किसी और बात को करने का, उसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही कम वक्त है। फिर खरगोश के हारने का एक और कारण यह भी था कि उसे अपने तेज दौड़ने का बड़ा ही घमंड था। उसके इसी घमंड ने उसे बाजी जीतने से वंचित कर दिया था। जीवन में हमारा ऐसा घमंड हमें विनाश की ओर ले चलता है। यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, घमंड के मुकुट पर हाय। हमारे पास वक्त का बहुत होना या जीवन का बहुत लंबा होना जैसी हमारी सीमित और तुच्छ समझ ही हमें जीवन में पराजय का मुख दिखाती है। सच तो यह है कि विजयी जीवन जीना है तो वक्त की कीमत और कमी दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए जीना आवश्यक है, अन्यथा जीवन की दौड़ जीत लेना किसी भी कीमत पर संभव नहीं। वक्त की कीमत और कमी को समझ लेना ही जीवन में हर प्रकार के घमंड का परित्याग करके जीना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन। संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्को से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से पुरस्कार पाने के लिए और योग्य ठहरूं। जीवन की दौड़ में मंजिल तक पहुंच जाना ही जीवन है, सच यही जीवन है, एक पुरस्कृत जीवन।

दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। पता एक बार फिर से: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008।

0: प्रिय दोस्तों, आज के चिंतन प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हमारी तरफ से मंगल कामना करते हुए प्रातः की शुभकामनाएं। आज के चिंतन प्रसारण में जीवन पथ दर्शक शुभ संदेश का चिंतन करेंगे। आज का मानव ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के उपायों को लेकर उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जब उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो यह दुखी और निराश बन जाता है। सभी कुछ निर्थक लगने लगता है। उसके जीवन में हमें रस लाना है। दोस्तों, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि मानव ईश्वर की प्राप्ति में निष्फल बन गया है और निराश हो गया है। उसके लिए हमारा जीवित परमेश्वर स्वतः उन्हें खोजने निकला है। उनकी आत्मा का उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आज की सुबह हम उस जीवित परमेश्वर के सत्य को समझने, उसको स्वीकारने और अंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसी आशा और प्रार्थना है।
1: खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। जब दोनों के बीच एक बार कौन तेज दौड़ता है, इस बात की बाजी लगी थी। दौड़ शुरू हुई और जैसा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। काफी आगे निकल जाने के बाद उसने रुक कर पीछे की ओर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। वो जगह जहां खरगोश रुका था बड़ी ही प्यारी थी। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ठंडी हवा और पास बहती हुई नदी का स्वच्छ और निर्मल जल, सबने मिलकर खरगोश को मोहित कर डाला। उसका मन किया कि वो इन घासों का मजा लेकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। फिर खरगोश ने पेट भर घास खाकर आराम किया। आराम करते करते उसने बुदबुदाया, तेज दौड़ना क्या सबके वश की बात है? दौड़ तो सकता नहीं, चला बाजी लगाने। तेज दौड़ने के घमंड में चूर खरगोश की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं। इधर कछुआ अपनी मंद गति से निरंतर चलता रहा। उसे तो बस दौड़ जीतने की ही धुन थी। सो चुकने के बाद जब खरगोश की नींद टूटी तो काफी समय बीत चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश ने फिर घमंड से बुदबुदाया, दौड़ तो सकता नहीं, चला मुझसे तेज दौड़ने की बाजी लगाने। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा, किंतु जब वो तय किए हुए स्थान पर पहुंचा तो कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। तेज दौड़ने वाला खरगोश अपने घमंड के कारण बाजी हार चुका था। क्या खरगोश, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने घमंड के कारण वो हार चुका था। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी क्या हुआ है, अभी तो जीने के लिए एक लंबी अवधि पड़ी है, जो काम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। किंतु सच तो यह है कि ऐसा सोचकर जहां हमें एक और जीवन के बहुत ही छोटे होने का एहसास तक नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर हमारे पास बहुत वक्त है इस असत्य की परिधि में बंद कर हम सांसारिक हरियाली अर्थात संसार की चकाचौंध, वैभव और शान शौकत को देखकर वक्त की मूल्यता को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन की हर बाजी हम हारते चले जाते हैं। क्रिस्ट कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्रिस्ट का ये कथन हमारे जीवन का एक सत्य है, जहां हमारा जीवन बहुत ही छोटा बनकर रह जाता है। एक दूसरे संदर्भ में क्रिस्ट पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्रिस्ट ने हमेशा अपने जीवन में वक्त को पहचान कर जिया। अपने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माता से क्रिस्ट को यह कहना पड़ा था, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना ही नहीं, क्रिस्ट की इसी निरंतर कार्य प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन में उन कामों को पूरा करने से कभी रोक नहीं पाए जो काम वे करने के लिए संसार में आए थे। क्रिस्ट कहते हैं 10 कुंवारियां थी, उन्हें दूल्हे की प्रतीक्षा थी। उन 10 कुंवारियों में से 5 ने दूल्हे से मिलने के लिए पूर्ण तैयारियां कर रखी थीं और अन्य 5 ने नहीं। जिन 5 कुंवारियों ने तैयारियां नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, जब दूल्हे के आने का समय निकट होगा तो उस समय तैयारियां कर ली जाएंगी। इसलिए वे निश्चिंत, अचानक दूल्हे का आना हुआ और वे दूल्हे से भेंट करने से वंचित रह गईं, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं। 10 कुंवारियों का ये बहुचर्चित दृष्टांत हमें इस बात से अवगत कराता है कि जीवन में हमें सदा तैयार रहना है, और तैयार रहना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इन कुंवारियों में से सिर्फ 5 ही दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर सकी थीं, अन्य 5 नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देर है, बहुत वक्त है। ये सोचकर वे ऊंघते ऊंघते सो गई थीं। नतीजा ये हुआ कि जब दूल्हे के आने की धूम मची तो वे तैयार नहीं थीं। इस कारण वे द्वार के बाहर छोड़ दी गईं। जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए बाइबल कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जीवन में वक्त की कमी को प्रकट करते हुए पवित्र बाइबल कहती है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है फिर लोप हो जाती है। किंतु इतनी अस्पष्टता के बावजूद आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार की हरियाली में ही अपने मन को लगा रखा है। वे इस सच्चाई को अनुभव करने से चूक गए हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान, चाहे वो तेज दौड़ने का हो या फिर किसी और बात को करने का, उसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही कम वक्त है। फिर खरगोश के हारने का एक और कारण यह भी था कि उसे अपने तेज दौड़ने का बड़ा ही घमंड था। उसके इसी घमंड ने उसे बाजी जीतने से वंचित कर दिया था। जीवन में हमारा ऐसा घमंड हमें विनाश की ओर ले चलता है। यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, घमंड के मुकुट पर हाय। हमारे पास वक्त का बहुत होना या जीवन का बहुत लंबा होना जैसी हमारी सीमित और तुच्छ समझ ही हमें जीवन में पराजय का मुख दिखाती है। सच तो यह है कि विजयी जीवन जीना है तो वक्त की कीमत और कमी दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए जीना आवश्यक है। अन्यथा जीवन की दौड़ जीत लेना किसी भी कीमत पर संभव नहीं। वक्त की कीमत और कमी को समझ लेना ही जीवन में हर प्रकार के घमंड का परित्याग करके जीना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन। संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्को से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से पुरस्कार पाने के लिए और योग्य ठहरूं। जीवन की दौड़ में मंजिल तक पहुंच जाना ही जीवन है, सच यही जीवन है, एक पुरस्कृत जीवन।

दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। पता एक बार फिर से: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008।

0: प्रिय दोस्तों, आज के चिंतन प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप सबको हमारी तरफ से मंगल कामना करते हुए प्रातः की शुभकामनाएं। आज के चिंतन प्रसारण में जीवन पथ दर्शक शुभ संदेश का चिंतन करेंगे। आज का मानव ईश्वर को पाने के लिए कई तरह के उपायों को लेकर उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जब उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो यह दुखी और निराश बन जाता है। सभी कुछ निर्थक लगने लगता है। उसके जीवन में हमें रस लाना है। दोस्तों, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि मानव ईश्वर की प्राप्ति में निष्फल बन गया है और निराश हो गया है। उसके लिए हमारा जीवित परमेश्वर स्वतः उन्हें खोजने निकला है। उनकी आत्मा का उद्धार के लिए उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आज की सुबह हम उस जीवित परमेश्वर के सत्य को समझने, उसको स्वीकारने और अंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसी आशा और प्रार्थना है।
1: खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। जब दोनों के बीच एक बार कौन तेज दौड़ता है, इस बात की बाजी लगी थी। दौड़ शुरू हुई और जैसा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। काफी आगे निकल जाने के बाद उसने रुक कर पीछे की ओर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। वो जगह जहां खरगोश रुका था बड़ी ही प्यारी थी। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ठंडी हवा और पास बहती हुई नदी का स्वच्छ और निर्मल जल, सबने मिलकर खरगोश को मोहित कर डाला। उसका मन किया कि वो इन घासों का मजा लेकर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में आराम कर ले। फिर खरगोश ने पेट भर घास खाकर आराम किया। आराम करते करते उसने बुदबुदाया, तेज दौड़ना क्या सबके वश की बात है? दौड़ तो सकता नहीं, चला बाजी लगाने। तेज दौड़ने के घमंड में चूर खरगोश की आंख कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं। इधर कछुआ अपनी मंद गति से निरंतर चलता रहा। उसे तो बस दौड़ जीतने की ही धुन थी। सो चुकने के बाद जब खरगोश की नींद टूटी तो काफी समय बीत चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार भी उसे कछुआ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। खरगोश ने फिर घमंड से बुदबुदाया, दौड़ तो सकता नहीं, चला मुझसे तेज दौड़ने की बाजी लगाने। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा, किंतु जब वो तय किए हुए स्थान पर पहुंचा तो कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। तेज दौड़ने वाला खरगोश अपने घमंड के कारण बाजी हार चुका था। क्या खरगोश, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने घमंड के कारण वो हार चुका था। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी क्या हुआ है, अभी तो जीने के लिए एक लंबी अवधि पड़ी है, जो काम जब चाहेंगे तब कर लेंगे। किंतु सच तो यह है कि ऐसा सोचकर जहां हमें एक और जीवन के बहुत ही छोटे होने का एहसास तक नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर हमारे पास बहुत वक्त है इस असत्य की परिधि में बंद कर हम सांसारिक हरियाली अर्थात संसार की चकाचौंध, वैभव और शान शौकत को देखकर वक्त की मूल्यता को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन की हर बाजी हम हारते चले जाते हैं। क्रिस्ट कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्रिस्ट का ये कथन हमारे जीवन का एक सत्य है, जहां हमारा जीवन बहुत ही छोटा बनकर रह जाता है। एक दूसरे संदर्भ में क्रिस्ट पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्रिस्ट ने हमेशा अपने जीवन में वक्त को पहचान कर जिया। अपने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माता से क्रिस्ट को यह कहना पड़ा था, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना ही नहीं, क्रिस्ट की इसी निरंतर कार्य प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन में उन कामों को पूरा करने से कभी रोक नहीं पाए जो काम वे करने के लिए संसार में आए थे। क्रिस्ट कहते हैं 10 कुंवारियां थी, उन्हें दूल्हे की प्रतीक्षा थी। उन 10 कुंवारियों में से 5 ने दूल्हे से मिलने के लिए पूर्ण तैयारियां कर रखी थीं और अन्य 5 ने नहीं। जिन 5 कुंवारियों ने तैयारियां नहीं की थी, उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, जब दूल्हे के आने का समय निकट होगा तो उस समय तैयारियां कर ली जाएंगी। इसलिए वे निश्चिंत अचानक दूल्हे का आना हुआ और वे दूल्हे से भेंट करने से वंचित रह गईं, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं। 10 कुंवारियों का ये बहुचर्चित दृष्टांत हमें इस बात से अवगत कराता है कि जीवन में हमें सदा तैयार रहना है, और तैयार रहना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इन कुंवारियों में से सिर्फ 5 ही दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर सकी थीं, अन्य 5 नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देर है, बहुत वक्त है। ये सोचकर वे ऊंघते ऊंघते सो गई थीं। नतीजा ये हुआ कि जब दूल्हे के आने की धूम मची तो वे तैयार नहीं थीं। इस कारण वे द्वार के बाहर छोड़ दी गईं। जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाते हुए बाइबल कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना ही वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जीवन में वक्त की कमी को प्रकट करते हुए पवित्र बाइबल कहती है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है फिर लोप हो जाती है। किंतु इतनी अस्पष्टता के बावजूद आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार की हरियाली में ही अपने मन को लगा रखा है। वे इस सच्चाई को अनुभव करने से चूक गए हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है और परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान, चाहे वो तेज दौड़ने का हो या फिर किसी और बात को करने का, उसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास बहुत ही कम वक्त है। फिर खरगोश के हारने का एक और कारण यह भी था कि उसे अपने तेज दौड़ने का बड़ा ही घमंड था। उसके इसी घमंड ने उसे बाजी जीतने से वंचित कर दिया था। जीवन में हमारा ऐसा घमंड हमें विनाश की ओर ले चलता है। यशाया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, घमंड के मुकुट पर हाय। हमारे पास वक्त का बहुत होना या जीवन का बहुत लंबा होना जैसी हमारी सीमित और तुच्छ समझ ही हमें जीवन में पराजय का मुख दिखाती है। सच तो यह है कि विजयी जीवन जीना है तो वक्त की कीमत और कमी दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए जीना आवश्यक है। अन्यथा जीवन की दौड़ जीत लेना किसी भी कीमत पर संभव नहीं। वक्त की कीमत और कमी को समझ लेना ही जीवन में हर प्रकार के घमंड का परित्याग करके जीना ही जीवन है। सच यही जीवन है, एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जीवन। संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्को से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से पुरस्कार पाने के लिए और योग्य ठहरूं। जीवन की दौड़ में मंजिल तक पहुंच जाना ही जीवन है, सच यही जीवन है, एक पुरस्कृत जीवन।

दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। पता एक बार फिर से: कार्यक्रम चिंतन, जीवन संदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 9009, मणिनगर, अहमदाबाद 380008।